0: एसिडिटी तबीयत जुड़ी गया पौ मेरे सो जी बिल्कुल दर्ज हो बे कि मेडिसन शरा इंशाल्लाह जी हुन जदीद ही इंशाल्लाह राजेश क्लिनिक ता और मेडिसन वरतो इंशाल्लाह दा दर्द नु ठीक छी और मेदी दा मसला भी ठीक छी।
1: सही ने बिल्कुल डॉक्टर से गुरुज बकल बने बोल सो के कहन दा ने अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
1: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
1: जी सु खबर की केन जना
2: सोए खबर का उदा बानो ना
1: जी सोए से प्रश्न के डॉक्टर से ना
2: ठीक
1: डॉक्टर साहब बिल्कुल जवाब दर के
0: बिल्कुल ना स्टोमेटाइटिस दी तवेल की चिकला ते खुला की चाले जुड़ी शी और पुले गुंद की राशि और डेर ज्यादा दर्द और सवेर पेन और बर्निंग और तकी की दस कहना खुला की गिर चाह पेरा शून्य सौ रहा बर लान दी रोजी करने मैं कि चिकला या ज्यादातर चाहे एंटीबायोटिक ज्यादा खोल जी ताकि दो जी की या मैं दस खुराकों ने कही कहना तेज गर्म शेगा मैदे की एसिडिटी सिवा शी पहुँचा।

मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज़, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक, जवन रंग अमन।

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: के लिए खुशियों की आवाज, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक जवन रंग अमन।

हाँ बिल्कुल जरूर जरूर ये इस्तेमाल करें। उज़ैफ़ा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम सीधे तो से दिमागी मसला खत्म ना से हो तो से ढेर क्रीमी ना इस्तेमाल कर ढेर फेस वॉशी ना मैं इस्तेमाल करी और नन चे जकीम क्रीम देर कहो दा तो से तजा से पखले ना दे जनाब पदेश मनी बैक गारंटी जेरे फायदा देर नकड़ा तो पैसे वापस खुदा उम्मीद दो दा यकीन न रहो दा क्रीम तो से ता फायदा दे दूसरा यू आदत खुजिफा कंपनी शिफा विटामिन सी फेस वॉश इस्तेमाल से तो से ता 100 फीसद रिजल्ट मिलाओ इन द ओवरेज से जो तो से मखो पर बदलावल बिल्कुल रुचि और जनाब अक्सर दस से मखीना हटता दे चाहे ता पर इन द ओवरेज से फायदा हो और जने भी दस से बीच डेढ़ जूत खरुप से नो किदाई सी चाहे आप इन द ओवरेज न टे मोड़ा भी हो फायदा ओवर का मिला जी बिल्कुल इस्तेमाल ज़ेफ़ा कंपनी शिफा ब्यूटी ज़ेफ़ा कंपनी शिफा विटामिन सी।

0: खुश खबरी। हुज़ैफ़ा कंपनी का बड़ा दावा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब मुमालिक, यूरोपीय मुमालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश, खुश्की, सिकरी खत्म, मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है।
1: अगर आपके बाल गिरते नहीं, गन्ने लंबे चमकदार भी है, खारिश, खुश्की, सिकरी कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी हफ्ते में एक बार या दो बार शिफा तेल से सर की मालिश करें ताकि आपके बाल सेहतमंद रहे, क्योंकि इंसान के 90% खूबसूरती हुसन व जमाल बालों पर है।
0: हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तेल, पिशावर, बन्नू, लक्की, करक, डीआई खान, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, इस्लामाबाद के अक्सर जनरल स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ शवी ददवा थोरो निशान वाला हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तेल चेसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी ओसोस गंजे शवी भी याए दसर विख्तान गुर्जीगी नो अगा सड़ाए चे सो रजे शिफा तेल पखपल सरबा ने मालश की नो दद पसरबो दुबारा नवी विश्तान पैदाशी। शिफा तेल विश्तान गुर्जवल बंदवी विख्तान गण और उजद कवी देसर खारश खुश्की पीना पखा हम खत्म कवी जनना मर्दना द्वाड़ो दपारा बराबर फायदेमंद। मजीद मालूमातो दपारा पदे नंबर राबिता कवले शे 0331-397-3636 और बल नंबर दे 0335-352-3333।

सुरक्षा उसे डायल के हिस्से पर 330 और 344-717 यानी 0000-0000 वो यो वो शाबसी जी जर जर काल।

0: Τώρα η μαζί με ζει, δάρ το ούγε γέζει από τα σαπάρσι, δε τόσα έχω χαστηθεί.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτερ, έχω χαστηθεί.
2: Έσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα η μιζή μόχο κορτά, νέσνελ ο μάλτι νέσνελ, καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βορίβι. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε τα σαραγγε σαρα προβρέι.
1: Βέλκολ τα ρεχανά, τα κιλεβε χάρβαχτε μούταχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βορτάλ σε ρικρέτη, ο στούλ κούρβολα να χωσούλτι.
0: अच्छा ही मिस सहार सर अब रो दर्द तो हुई या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सा पर युक्शले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर दा कपड़े सा पर ही पवात लोसीना न खर पवी
0: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दर तो हुई जी दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने গলছে আন্দ্রনলা কি গেট জানছে বেগালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেপসার অদরতে মিলাবিজি

वेलकम वेलकम मेरे प्यारे आरजे साहबो, आपकी वॉइस बहुत जबरदस्त आ रही है, माशाल्लाह नजर ना लगे आपका। आई एम डॉक्टर जोया फ्रॉम डोमेन, ढेर जूता मानना यो जहान ज्यादा मानना रिचर्ड सदव फ्रॉम करको प्रेशर दिस डायमंड वर्ड। किताबों की अहमियत अपनी जगह, लेकिन सबक वही याद रहती है जो वक्त और लोग सिखा देते हैं। ढेर जूता मानना यो जहान मानना। वैसे तरखाना रुशिखाना दिल रुपातला डाली भी सख्त अच्छा डाली भी द सख्त वरजो यार असश पे बदरंगे शपे वरजे पमार रख लेती ना फातमा वजीर तला डेर जो तमना वैसे हम नशना वो दुनिया वजीर इल्हाम वजीर तला डाली भी हगा पकड़स खानदा दे निष्ठा हगा पकड़स खानदा दे निष्ठा द दुनिया की गमुना उखवाड़े माइना फातमा वजीर तला यो जहान होना। बाकी नूर मैसेज मा के साइदो जैसे जिना मर रहूं दी ओ बाकी मैसेज मा के साइदो वैसे आई एम नादिया बाहर का जल ये शो मानना शुक्रिया। वैसे अरे जिमल एंड खुशाब हो तनादिया जानता फातमा गुलिता ओ वाला दाचे सलोमो अर्था ओके आगे ना मैं कुर्बान काजल गोली मानना शुक्रिया। वैसे मेरी पुखवाड़े फ्रेंड अच्छा मो ख्वाजे फ्रेंड सरंग दी ओ विच वेरखड़ी ओ सर वफा दो अच्छा सही है अवल खो सर वफा दा सही है देर जो तमना मरव तुषारो जल मरत यो जहान मना अरे फात घटक वे के ना विच नन खो दे बिया मासे जोड़े खड़े दी ओ से लोड न से ओए ओए मना न।